पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: CBN 뉴스. आप सुन रहे थे जीए
1: मटियारी के हो तो आवारी की अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: कोक स्टूडियो सीजन 9.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे हैं नेटवर्क पर केटीएन। आप
3: जी महाराज में खुले नमूने सामू अची वही वफाकी वजीर हसन इकबाल मुल्क में 15 नवा सूबा कायम करण की तजवीज दिले चयो आज सिस्टम घुर्बल नतीजा न पियो डे हर सूबे के ट्रेनेशन में विराइण घुर्जे मुल्क में नवा सूबा ठाहिण लाइ जायज़ा कमेटी जोड़े कौमी ऐं सियासी बहस शुरू कयो वञे बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ इंतज़ामी ढांचे खे पुराणो इंतज़ामी यूनिटनि खे ज़रूरी करार ॾींदे चयो आहे त सिंध असेंबली पंहिंजो ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी पर उहो मामिलो वफ़ाक जो आहे। राणा सनाउला चयो त सिंध असेंबली मां जेको ठहराउ मंज़ूर थियो अहिड़ा ठहराउ परियां बि मंज़ूर थी चुका आहिनि। ऐवान में तकरीरुनि दौरान क़ौमी असेंबली खे गैर ज़रूरी तौर निशानो बणायो वियो। नून लीग ते पीपल्स पार्टी खे इतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ जी लंडन में सदारी सां मुलाक़ात सदर आसिफ अली जी कोशिश सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह फरियाल टालपुर ऐं सैयद नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में 28 यानी तिरमियम बाबति अहम फैसलनि जो इम्कानु

एम क्यू एम पाकिस्तान अलादगी पसंद तारीख ठहराव जमा कराए छो सिंध असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करायल ठहराव तेवान अलादगी पसंद तारीख उन सिंधु देश के नजरिए के रद्द करण समय

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: जोड़ी कौमी ऐसे हमारे वजीर ख्वाजा आसिफ इंत जरूरी करार दींदे थे वाली पेड़ा पेरियां भी।

0: थी चुका है। नैवान में तकरीरन दौरान कौमी असेंबली के गैर जरूरी तौर निशानों बढ़ाए गये। जरदारी से मुलाकात 28 आईनी तरमीम के तैयार कल मसौदे से सदर आसिफ अली जरदारी के एतमाद में वठण की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी सिंध के वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह फरियाल टालपुर ए सैयद नासिर शाह के लंडन सदाए वरतो। इजलास में 28 आईनी तरमीम बाबत अहम फैसलों जो इम्कान। तो हू हुकूमत जा मुकम्मल एतादी त नाहिन पर उन जो साथ दींदा आहिन। हुकूमत समझे थी साथ की जरूरत है त शिकायतन जो अजालो भी थियण घुर्जे। संदन शिकायतू कश्मीर चूंडन जजेस मुकररी बेन मामलन ते आहिन। पार्टी जो फैसलो है त अगभराई थियण ताई हुकूमत जो साथ न डिनो वेंदो। सिंधु देश के नजरिए खिलाफ सिंध असेंबली में कराए छो। सेक्रेटरिएट में जमा करायल ठहराव में ऐवान अलहदगी करण एतिहाद इलाकई सईंदड़ हर तो ऐवान इन गाल की तोसी करे तो चीफ जो चवण है अज खे असेंबली में ठहराव पेश कर डनो वो। स्पीकर दबाव में नजर आयो गुजरियल डी के ऐवान में ठहराव शामिल न कर। मुखालिफ धुर सिंध के विरहांगे वारी साजिश लिखाण लाए सिंधु देश के कूड़न इल्जाम जो सहारो वठी रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो जवाबी ठहराव आवाम के घुमराह कर कोशिश है। सिंधु देश हुए या जिनापुर पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफा करण जाने थी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीद सिंधु देश के बयानिये के रद्द कर छो। नासिर शाह तो सिंध असेंबली जो कालो को दी तारीखी हो धरती के विरहांगे वारी साजिशों नाकाम बनाय व्यू। एमपीएम इजलास जो बायकाट करे साबित कयो तो हुआ सिंध दुश्मन साजिश जो हिस्सो है। पीटीआई वक्त गैर हाजिर रही सिंध दुश्मनी जो सबूत दिनो। डीजल महंगो कर सस्तो डीजल फी लीटर महंगो कर वयो। पेट्रोल जो नव अघ 345 रूपया 87 पैसा डीजल जो नव अघ 378 रूपया 5 पैसा थी वयो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल डीजल जा नव अघ 7 सितंबर तक लागू हुआ। जे गाने में हमले का बिजली जो झटको नेप्रास के मुल्क के वापेदार लाए माहवार ट्रेन माही एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी कर छी। माहवार एडजस्टमेंट डे माही 52 पैसा फी यूनिट महंगी कर जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब माहवार एडजस्टमेंट के वाद सितंबर के बिलन में लागू कई वेंदी। फ्यूल एडजस्टमेंट जो वापेदारन ते 33 अरब रूपये जो वादुबार मुंतकिल थींदो। माही एडजस्टमेंट जो फैसलो वफाकी हुकूमत के उमाणे छो। टे माही एडजस्टमेंट सितंबर का नवंबर 2026 लाइ लागू हूंदो। वाद के इलेक्ट्रिक के वापेदारन ते बे लागू। टे माही एडजस्टमेंट जो वापेदारन ते 12.78 अरब रूपये जो वादुबार हूंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान ए फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई 24 कलाक दौरान 36 दहशतगर्द मारजी वया। आईएसपीआर मूजिब कोटिया मस्तूं कलात ए सिबी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई क्यों वयू। कोटिया के इलाके शोभान में फितनाल खवारिज के चयन ठिकाणों के निशानों बनाए 26 खारजी जैनों बहरो कयो। मस्तूं में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्क्वाड 6 दहशतगर्द मारजी वया। कलात में छापे दौरान भारतीय स्क्वाड 3 दहशतगर्दन के मारो वो। दहशतगर्दन वटा हथायल बारूदी मसाका बम मौके से तबाह कया वया। जारी ऑपरेशन दौरान 72
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: इस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
2: की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: आप दारी जे लंदन में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सिंध जे विरांगे वारे मामले ते पीपी जे मौके ते जमीरण जो फैसलो। ज़रियन जो चवण आहे त मुलाकात 5 कलाक जारी रही। मुल्क जे सियासी सूरत कई वई। बिलियन डॉलर जो इंजड़ू बे डिन खाते तस्दीक कंदे चयो आहे त हथियारन जी फरहमी सां सौदे सलाहियत बेहतर थींदी। रियासी में अवामी तहरीक जे सरद जे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली। सिंध के हिस्से जो पानी डेण जो भी मुतालबो कयो वियो। अगवाणनि मूजिब सिंध के विरहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणी समेत समूरा आइनी हक़ डि॒ना वञनि। खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मर्डिंग करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। नारायण वाकियो पेश आयो आहे। ज़ख़्मी थिया गिरफ़्तार मूजिब वाकियो पुराणे तक आहे। लाड़काणे में दिन दौरान के वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ो जे वारसन SP चौक ते लाश
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज
5: GAFM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाई।

0: कलोड़े जे वार सां SSP चौक ते लाश रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरिन मूजिब डॉक्टरनि जी गफ़लत सबब औरत फोत थी आहे। गनी दाऊद पुट जा कातिल गिरफ़्तार न थिया। वारस एहतजाजनि शहर छॾे विया। गढ़ी खुदा बख़्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार आॾो एहतजाज करण जो ऐलान। मक़तूल नींगर जे वारसनि मूजिब पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम वई आहे। कातिल गिरफ़्तार कया वञनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु अखनि जे मुक़ाबले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत फसल भरपूर खिले।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बताए आप।
4: मलीर में सिटी पुलिस की मुबैना तशद्दुद में मारजी वयल नौजवान जे वारसन जो धरणो पुलिस न... दरिया सिटीअ में अवामी साफ कयो वञे। दरिया सिटीअ में अवामी तहरीक जे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिब सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध खिलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणीअ समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।
5: नवाबशाह ऐं खैरपुर में पेट ऐं अलिफ़ जे मुतालबनि जी मञता लाइ रैली ऐं धरणो। प्राइमरी उस्तादनि शिराज चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब वॾो धरणो हयो। अॻवाननि चयो आहे त बहिराड़ जे स्कूलनि में फर्नीचर समेत मुख़्तलिफ़ सहूलियतनि जी सख़्त खोट आहे। हुकूमत स्कूलनि ऐं उस्तादनि जा जाइज़ मसला हल कया वञनि।

दिल हमलो करे मामे अर्जुन है संदस घरवारी प्रेमी के जख्मी कयो। वाक्यो मीरपुर खास रोड ते कणक के गोदाम भरसा पेश आयो जख्मी जाल मुड़स अस्पताल मुंतकिल जवाबदार गिरफ्तार पुलिस मुझे वाक्य पुराने तकरार जो नतीजो आए।

0: लाड़काणे में विम दौरान फौत थियल औरत जे वारसन जो लाश रखी धरणो, जिम्मेवार डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कारूनी वारसन औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर करोड़ जे वारसन एसपी चौक ते लाश रखी धरणो आयो। मुजाहिरीन मूजिब डॉक्टर जी गफलत सबब औरत फौत थी आए, जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
1: ठुल में चार साल अग कतल थियल नीगर अब्दुल गनी दाऊद पुटो जा कातिल गिरफ्तार न थिया। वारस एतजाजन शहर छडे विया। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद बेनजीर भुट्टो जी मजार आडो एतजाज करण जो ऐलान। मकतूल नीगर जे वारसन मूजिब पुलिस जवाबदारन के गिरफ्तार करण में मुकमल तौर ते नाकाम वई आहे। कातिल गिरफ्तार कया वञनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी
2: GAFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी।

0: है आवाज
1: GAFM नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
0: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पेट्रोलियम लेवी के मद में अवाम खार का ट्रोड़ो गाड़ी शहबाज हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख जो महांगे तरीन तेल वठण ते मजबूर हुकूमत अवाम खा लेवी के मद में 3137 अरब खां वधीक उगाड़ी कर चुकी मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीजल फी लीटर 233 ए पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विक्रो कयो इन वक्त भी पेट्रोल ए डीजल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल है जडे त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग उगाड़ी वेंदी आए।
4: जमात इस्लामी तेल के अघन में वाद खिलाफ हुकूमत के फीथा रोक हड़ताल जो चिताव डेई छो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे हाफिज नईम चयो तो हुकूमत मसलो हल न कयो तो फीथा रोक हड़ताल तरफ इंदासी पेट्रोलियम लेवी के आशियन जो बार गरीब अवाम ते विधो पो वे आलमी मंडी में तेल महंगो थी रो है तो पेट्रोलियम लेवी खत्म कर छो
3: पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मॉब जारी केपीए के वडे वजीर सोहेल आफरीदी की अगवाणी में रैली ठारू शाह पहुंची वही सोहेल आफरीदी कौमी असेंबली के अगूणे डिप्टी स्पीकर जफर अली शाह से भी मुलाकात कई सोहेल आफरीदी चयो तो जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।
4: कराची की अदालत में गुल प्लाजा केस की बुधड़ी पुलिस आलान अदालत में जमा कराए छो तनवीर पास्ता मुख जवाबदार करार 11 साल की उजेफा जो केस अलग हल्द दखण की अदालत में केस की बुधड़ी थी जवाबदार तनवीर पास्ता इंडिया अदालत में पेश थे पुलिस आलान से गड 85 शाहिदन की लिस्ट भी अदालत में जमा कराई।
3: कंदकोट वेझो मुड़स कार इल्ज़ाम हेठ ज़ाल खे क़त्ल करे छॾियो ए सेक्शन थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कार इल्ज़ाम हेठ क़त्ल कयो पुलिस मूजिबि जवाबदार फरार थी वियो आहे खेसि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो वधीक जांच बि जारी आहे।

मलिर में सिटी पुलिस के मुबैना तशद्द में मारजी वेल नौजवान के वारसन जो धरणो। पुलिस नौजवान के वारसन के कौमी शाहरा से धरणो का रोके छो। नौजवान इरशाद बलोच के वारसन मेमर गोड रोड से धरणो हयो। वारसन मूजिब नौजवान के बेगुनाह कत्ल कर इंसाफ कर वे।

0: मुख़्तलिफ़ रैलियूं। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाननि मूजिब सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणीअ समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटे अलिफ जो मुतालबनि जी मंचालाए एहतजाज। स्कूलनि खे सहूलियतूं ॾियण जो बि मुतालबो। हैदराबाद, मटियारी, नवाबशाह सागर ऐं खैरपुर में प्राइमरी उस्तादनि एहतजाज कयो। अॻवाननि चयो आहे त तालीम खातो प्राइमरी उस्तादनि जा जायज़ मसला बि हल करण लाइ तयार न आहे। उस्तादनि जा मसला हल कया वञनि।

कराची में जूनियर साइंस टीचर टेस्ट पास उम्मीदवारों जो एहतजाज 35 दिन का एहतजाज जारी 50 का वधिक मार्कों खणंदड़ उम्मीदवारों प्रेस क्लब बाहरा कैंप ते एहतजाज करे सख्त मुजाहरो कयो। मुजाहरीन जो चवण है तो 50 मार्कों खणंदे पास करार जो मुतालबो कयो।

0: हैदराबाद के इलाके कासमाबाद के शेदी गोठ में गटर अंदर विछायल गैस पाइपलाइन में धमाका। अनवर उल्लास भरसा गटर अंदर विछायल गैस लाइन के धमाकन सबब इलाके में खौफ पखिड़ी वो। सीसीटीवी फुटेज में धमाकन सबब खौफ विचा मानुन के भजंदे दिसी सकजे थो। शहरीन पारा गैस लाइन की मरम्मत करण जो मुतालबो।
1: लाड़काने में वियम दौरान फोत थियल औरत के वारसन जो लाश रखी धरणो। जिम्मेवार डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासन औरत नाजिया जाल अब्दुल शकूर कलोड़ के वारसन एसएसपी चौक से लाश रखी धरणो हो। मुजाहरीन मूजिब डॉक्टर की गफलत सबब औरत फोत थी है। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
0: ठुल में चार साल कतल थे नींगर अब्दुल गनी दाऊद पोटो जा कातिल गिरफ्तार न थे। वारिस एहतजाजन शहर छड़े वया। गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर की मजार आडो एहतजाज करण जो ऐलान कर छो। मकतूल नींगर के वारसन मौजूद पुलिस जवाबदार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
4: जे FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे जीए
3: नहीं ये नहीं बनने चाहिए। इसकी वजूहात बहुत सारी सियासी जो आप सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उन सब चीजों के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब बात आती है कि पावर निचली सतह पर चली जाए तो उसके ऊपर हर एक को एतराज हो जाता है। अभी ये एतराज दूर करना है। आपको किसी ने नहीं कहा कि हम किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज होने देंगे। हम सब जो यहां लोग बैठे हुए हैं, हम सब इस ओथ पे हैं कि हमने किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज नहीं होने देनी है, लेकिन आईन में रह के तो हमारे पास बहुत पावर है। आज सिर्फ दो तीन चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा जो आप सब लोगों ने कही कि 79 इयर्स में हम सिर्फ 2.5 करोड़ बच्चा है जो आज भी स्कूल नहीं भेज सके। आज भी 10 में से 4 बच्चे हैं जिसको हम गजा प्रोवाइड नहीं कर सके। ये सब बातें आप लोगों ने आज सुबह से करी हैं। आज भी सिर्फ 55% पाकिस्तानी है जिसको पानी साफ नहीं मिल रहा। और चेयरमैन के साथ माजरत से, आज सिर्फ अदालतों में 20 लाख केसेस हैं जो लोग धक्के खा रहे हैं और इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। ये किसी एक हुकूमत का रिजल्ट नहीं है, ये हमारा 79 इयर्स का रिजल्ट है। ये सिर्फ फैक्ट्स वो नहीं है, ये वो फैक्ट्स हैं जो हम ऑफिशियली रिकग्नाइज करते हैं और इसके ऊपर हम दिन रात बैठ के कोशिश करते हैं कि इसको ओवरकम कर लें। आज भी वो वालिद और वालदा अपने बच्चों को स्कूल के जाने के लिए, हेल्थ के लिए और अपनी जस्टिस के लिए उसी तरह मुंतजर हैं जिस तरह आज से हमारे अबाउ अजदाद 79 ईयर्स पहले थे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: जीए FM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जो आवाज संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: वन इंतजामी यूनिट सां पंजाब या सिंध जी सुञाणप तब्दील न थींदी। पंजाब ऐं सिंध बि सिंधी। मोहसिन नकवी चयो त नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते बि जज़्बाती थियण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स नसल परस्तीअ जी बुनियाद ते न पर मसइलनि जे हल लाइ ठहिण घुर्जनि। पार्लियामेंट ऐं मीडिया खे बि नवनि इंतज़ामी यूनिट्स बाबति किरदार अदा करणु घुर्जे। इंतज़ामी ढांचो असर विञाए वेठो आहे। रीसेट घुर्बल आहे। रीसेट जो मक़सदु निज़ाम खे टोड़णु न आहे। रीसेट जो मक़सदु ग़लति शइ खे ठीकु करणु आहे। असांखे आइन जे अंदरि रही करे ई कमु करणो आहे। नवां सूबा ठाहिण सां मसइला हल न थींदा, मुस्तक़बिल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासीअ चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मशावरत कंदा हुया, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख्वाजा साद रफ़ी चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबी हयात पखिड़जी वेंदो। आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भले जेतिरा वणेव सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरीअ चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढनि इंतज़ामी यूनिट्स क़ाइम आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबलीअ जे स्पीकर मलक अहमद ख़ान चयो त सुठी हुकूमत निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि। पंजाब सिंध केपी ऐं बलोचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइन फ्रॉड जी मौजूदगीअ ताईं सुधारण जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी। सूबा चओ या इंतज़ामी यूनिट एमक्यूएम पंहिंजे मौक़ ते बीठल आहे। एमक्यूएम पंहिंजो मौक़ तब्दील न आहे कयो। भुट्टो जे ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एमक्यूएम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां वीहनि माण्हुनि में विरहाइजे थो। सिंध में अरिड़हनि सालनि खां पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालत बि इंताई ख़राब आहे। ही कॾहिं सिंध जे विरांगे जी कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिट्स जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसइला हल न थींदा, बिटो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि न ई भाईअ सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वाब चयो त कराचीअ खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रूपियनि जी बजेट जो हिसाब ॾे। लंडन पाकिस्तान जे सियासी मुलाक़ातुनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि चयो आहे त वज़ीर आज़म नज़ीर तारा जी सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात बाद अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुसबत। बिलावल सां मरियम जी मुलाक़ात बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं। इस्लामाबाद जे पिम्स थाने जी जांच जारी। पिम्स अस्पताल जे मुअतल कयल 8 आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। 8 ई आफ़ीसरनि जा नाला ईसीएल में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत 8 आफ़ीसरनि जा नाला ईसीएल में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो। कश्मीर में फसादी जथे जी फायरिंग में एफसी अहलकार शहीद, रेंजर्स अहलकार ज़ख़्मी। आज़ाद कश्मीर पुलिस मूजिब शरपसंद पुलिस पोस्ट

0: जमायत इस्लामी तेल जे अघन में वाध खिलाफ़ हुकूमत के फीथा रुख हड़ताल जो चिताव ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत मसइलो हल न कयो त लेवी जो न आहे। आलमी मंडीअ में तेल महांगो थी रहियो आहे त पेट्रोल लेवी ख़तम थियणु घुर्जे। पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मुम जारी। केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदीअ जी अॻवाणीअ में ठारू शाह खान नौशेरो फिरोज़ पहुची वई। सोहेल आफरीदी कौमी असेंबलीअ जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर ज़फर अली शाह सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदीअ चयो त जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी। कराचीअ जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी। पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 सालनि जी हुज़ैफा जो केस अलॻि लंघंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी फ़रस्त बि अदालत में जमा कराए छॾी। कोट वेझो मुड़ुस कारा इल्ज़ाम जे हद ॻोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी विया। खेस जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वधीक जांच बि जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: के बेहतर करना है मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो रुगो अख्तियार हेठी सतह ते मुंतकिल थींदा नौकरी ते रहा या न रहा मामले तां पोइते न हटंदुस लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चयो तो मामले ते सियासतदानन खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी नवनि इंतजामी यूनिट सां पंजाब या सिंध जी थींदी नवां इंतजामी यूनिट बि नस्ल या बिरादरी जी बुनियाद ते न पर बहितर हुकमरानी लाइ ठहण घुर्जनि मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे रीसेट करणो पवंदो असांजो मक़सद हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तम करण आहे नओं सूबो ठहणो आहे त इस्लामाबाद खे सूबे जो दर्जो मिलणु घुर्जे नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे मामले ते सियासतदारनि खां वधीक अवामी राय अहम आहे पाकिस्तान जी मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरी अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि नवनि नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आब हयात पखिड़जी वेंदो आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भले जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो को बि फ़र्क़ु न पवंदो मुमलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो त सुठी इंतज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा अवामी नुमाइंदनि खे अख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा इंतज़ामी अख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि सिंध के पी के ऐं बलोचिस्तान सां टकराव में आहिनि आईनी फराड जी मौजूदगी ताईं सुधारण जी ॻाल्हि बेमना हूंदी सूबा चओ या इंतज़ामी यूनिट एम क्यू एम पंहिंजी मौक़िफ़ ते बीठल आहे एम क्यू एम पंहिंजो मौक़िफ़ तब्दील नाहे कयो भुट्टो जी ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूद आहे कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरहाइजे थो सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि शहरनि जी हालत बि इंतिहाई ख़राब आहे

इहे कॾहिं सिंध जी विरांगे ऐं कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। बिटो मयार ख़तम थियण घुर्जे। इहे माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि, न ई भाईअ सां सचा आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो त कराचीअ खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुआ। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजेट जो हिसाब ॾे। लंडन पाकिस्तान जी सियासी मुलाकातनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि चयो आहे त आज़म नज़ीर तारड़ जी सदर आसिफ ज़रदारीअ सां मुलाक़ात बाद 28 आइनी तरमीम ते मुस्बत अगभराई थी आहे। बिलावल सां मरियम जी मुलाक़ात में बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं। इस्लामाबाद जी पिम्स थाने जी जांच जारी। पिम्स थाने जे मुअतल कयल 8 आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। 8 ई आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत 8 आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो।

जमात इस्लामी तेल जी अघन में वाद खिलाफ़ हुकूमत के फीथा रोक हड़ताल जो चिताव डेई छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज नईम चयो तो हुकूमत मसलो हल न कयो तो फीथा रोक हड़ताल तरफ वेंदासीं। पेट्रोलियम लेवी जो तेल जे अघन सां को भी वास्तो ना है। हुकुमरानन ऐं ब्यूरोक्रेसीअ जी अयाशियुनि जो बार गरीब आवाम ते विधो पियो वञे। आलमी मंडीअ में तेल महांगो थी रहियो आहे त पेट्रोलियम लेवी ख़तम करे छॾियो। पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मुहिम जारी। खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदीअ जी अॻवाणीअ में रैली ठारू शाह खां थींदे नौशहरो फिरोज पहुची वई। सोहेल आफरीदी क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डेप्टी स्पीकर सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदी चयो त जमहूरियत लाइ जदोजहद जारी रहंदी।

0: साथीअ जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 सालनि जी हुज़ैफ़ा जो केस अलॻि हलंदो। ॾखिण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी फहिरिस्त बि अदालत में जमा कराई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी 8.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सूबा चौ या इंतजामी यूनिट एमकेएम पैंजो मौकफ से बीठल है। एमकेएम पैंजो मौकफ तब्दील ना कर भुट्टो के ठायल आइन में नवन सूबन की गुंजाइश मौजूद है। कराची में मीडिया से गलाइंदे एमकेएम मगवान वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल है तो पाकिस्तान जो पैसो चैन सूबन बदला वीह मानून में विरायजे तो सिंध में 18 साल का पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबे में बुनियादी सहूलतू ना एक गटर भी संभाले नथा सकन शहर की हालत भी इंतई खराब है। ही कदें सिंध के विरागे कदें वरी इंतजामी यूनिटन की गाल कन था नवन सूबन से मुल्क जहा मसला हल ना बिटो मयार खत्म थे ही मानू न कराची शहर से सच्चा नई भाई से सच्चा कराची में मीडिया से गाले मेयर मुर्तजा वहाब कराची के विरायण की गाल कदड़ सब का पैरी पान जिला टाउन ठाया हुआ। मुस्तफा कमाल जो दौर खत्म थी वो हाँ मुर्तजा वहाब जो दौर है। मुस्तफा कमाल 300 अरब रुपये की बजट जो हिसाब दिया।

नंढनि पाकिस्तान जी सियासी मुलाकातनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि चयो आहे त आज़म तारड़ जी सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात बाद 18वीं आइनी तरमीम ते मुस्बत अगवाई थी आहे। बिलावल सां मरियम जी मुलाक़ात में बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज, उसी

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: डाले।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
4: बैठना चाहिए पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये है कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गए। ना तो ये एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकते हैं।
5: जज्बाती न थियो इंतजामी यूनिट या नुमाइंदो रोके न थो सके। इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमत

कराचीअ जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 सालनि जी ॾखिण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी फ़हिरिस्त बि अदालत में जमा कराई।

सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ अवामी तहरीक जो ठठे टंडो जान मोहम्मद ए बिरया सिटी में रैलियों सिंध के हिस्से जो पानी डेण जो भी मुतालबो किया वो अगवान मूजिब सिंध के विरहण वाली साजिश कें भी सूरत में दी सिंध खिलाफ साजिशों बंद कर सूबे के पानी समेत समूरा आइनी हक दिना वन सिंध के मुख्तलिफ शहर में पेटे अलिफ जो मुतालबन की मंजता ला एहतजाज स्कूलन के सहूलतू डेण जो मुतालबो हैदराबाद मटियारी नवाबशाह सांगण खैरपुर में प्राइमरी उस्ताद एहतजाज किया अगवान तालीम खातों प्राइमरी उस्ताद जायज मसला भी हल करने

नथा मुबैना तौर हिरासत थियण बाद आपघात कंदड़ फामिंदा लिगा मादी जो इज़हार करे छॾियो। टंडो अलियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फामिंदा जे वालिद इंतज़ार लिगारीअ जा पुलिस मथां जवाबदारनि खे रिलीफ ॾियण ऐं सहूलतकारी करण जो इल्ज़ाम। इंतज़ार लिगारी चयो त 5 महीना गुज़रण बावजूद पुलिस संदसि धीअ जी रिपोर्ट जमा नाहे। कार बणाई कंदकोट वेझो ॿिनि धुरनि में झेड़ो, फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल। जमाल थाणे जे हद में झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबु मोहम्मद कुकारी निंदवाणी इतला ते पुलिस मुंतकिल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि झेड़े जो कारण मालूम न थी सघियो आहे। कश्मीर में ट्रैक्टर ट्रालीअ जो टकर लॻण जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 ॼणा फौत। ॾखण बंगलो वटि हादसे में 28 वरनि जो शेरजान ऐं 36 वरनि जो करीम बख्श मज़ारी फौत थी विया। ॿई मर्ड़ इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। ऐं कोटड़ीअ में मेहड़ वासी शख़्स साहुरनि पारां ज़ाल न ॾियण ते पाण खे बाह ॾेई छॾी। ज़ख़्मी हालत में इस्पताल मुंतकिल। वारसनि मूजिब 40 वरनि जे अल्ताफ़ मयसर ज़ाल न ॾियण मिलण ते मायूस थी पेट्रोल हारे पाण खे बाह ॾेई ॾिनी। ज़ख़्मी शख़्स इस्पताल मुंतकिल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जो आवाज की पॉइंट सिक्स सिंध जो आवाज
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर एफएम नेटवर्क
2: की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाई।
3: आप सुन रहे थे
6: लाहौर में नवन सुबन रावत नेशनल पॉलिसी डायलॉग के खिताब। शायद काकाना पासी चौहत सूबाई हुकूमतों बादशाह का भी बुरे अंदाज में हली रही हैं। बादशाह भी मुशावरत कंदा हुआ असांजा सूबा हिटाटन ते हली रहा है। नून लीग जे ख्वाजा सादक नंढा सूबा ठाण सा आप पकड़ी वेंद आईन जी तोहीन करनी है तो कोई भली जेतरा बणो सूबा ठाए छो को भी फर्क न पवन। ममलकती वजीर ओन चौधरी तरक्की याफ्ता मुल्क में नंढा इंतजामी यूनिट कायम आन। नवन इंतजामी यूनिट्स से पार्लियामेंट अंदर ए बाहर बहस कर घुर्जे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान है तो हुकूमती निरा सुधारा आना पवंदा। अवामी नुमाइंदन के इख्तियार दियण बिना मामला अगते न वधंदा। इंतजामी इख्तियार चूंडियल नुमाइंदन वट हुजण घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ए बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिजनेस आइन सा टकराव में आन। आइनी फ्रॉड की मौजूदगी ताई सुधारण की गाल बेमायनी होती। पीपल इम्कानी विराग के खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव पास थियण बावजूद वफाकी वजीर के तकरारी बयान के सूबे की आइनी हैसियत में गैर आइनी मुदाखलत करार दई छो। समूरे सिंध में एहतजाज जो फैसलो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की सदारत हेठ पार्टी जो अहम इजलास। सिंध के विराग के खिलाफ ठहराव मंजूर थियण बावजूद वफाकी वजीर पारा नवन सूबन इंतजामी यूनिटन बाबत दिनल बयान की सख्त लफ्ज में मुजम्मत कई वही। सिंध के इम्कानी विराग के खिलाफ रुकन में एहतजाज जो फैसलो इजलास में वजीर आजम वफाकी वजीर के नवन सूबन ए इंतजामी यूनिटन बाबत बयान जो नोटिस वे डेण का पी एस खिलाफ करारदाद के वोटिंग में हिस्सो न वठंदड़ जमायतन के सख्त तनकीद।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: GA FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: वजीर मोहसिन नकवी जो लाहौर में तकरीब का खिताब, मोहसिन नकवी चयो त मामले खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी, मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तम करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे, मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबे खां वॾो हामी थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
7: नवा सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे शाहिद खाकान बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा।

0: असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां बि हयात पखिड़जी वेंदो? आइन जी तोहीन करणी आहे त पोए भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियण घुरिजे। कंहिं मथां चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ तरह आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजण घुर्जे। पंजाब, सिंध, केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बे मानी हूंदी।
1: सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा तकरारी बयान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खां नोटिस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े जी सदारत हेठि इजलास दौरान जी सख़्त लफ़ीकी ठहराउ मुराद अली शाह खे ख़िराज तहसीन पेश। इजलास में ख़बरदार कयो वियो त आइन में तरमीम लाइ वफ़ाक़ वटि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मौजूद न आहे, तंहिं करे जमहूरियत जे तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे। पीपल्स पार्टी अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख्तियारी, सिंध जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते धाड़ो हणण न ॾींदी। वफ़ाक़ी वज़ीरनि सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ तकरारी बयाननि खां पासो न कयो त समझो वेंदो इन साज़िश जे पुठियां वफ़ाक़ी हुकूमत शामिल आहे।

0: सरदारी सां मुलाकात वात अठाई आइनी तरमीम ते मस्तक भराई थी आहे। बिलावल सां मरियम जी मुलाकात में बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं।
1: इस्लामाबाद जी पिम्स थाने जी जांच जारी। पिम्स अस्पताल जे मुअतल कयल अठ आफिसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। अठ ई आफिसर जा नाला ईसीएल में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत अठ आफिसरनि जा नाला ईसीएल में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो।

0: पीटीआई जी सीट मुहिम केपी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी जो काफिलो मुख्तलिफ शहरन का थींदो शाहपुर चाकर पहुंची वियो। कारकुनन खे खिताब कंदे सुहेल आफरीदी चयो त सिंध जे गैरतमंद अवाम जे जोश ऐं जज़्बे खे सलाम आहे। ईंदड़ चूंडनि में ही जेतिरी बि धांधली कनि पीटीआई खे शिकस्त न ॾेई सघंदा।
1: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अवामी तहरीक जूं ठठे टंडो जान मोहम्मद ऐं बिरयास

0: स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख़्तियार हेठें सतह ते मुंतकिल थींदा। ॾखिण या उत्तर पंजाब ठहिण सां पंजाब जी हैसियत ख़तम न थींदी। ईअं ई सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स ठहण सां सिंधियुनि खे को पंहिंजी सुञाणप खसे न सघंदो। आऊं हिन नौकरीअ ते रहां या न रहां, मामले तां पोइ ते न हटंदुसि। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो लाहौर में तक़रीब का ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करणु न, पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तम करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुर्जे। आउं उन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
1: नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां बेहद पकड़जी वेंदो? आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमानी हूंदी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: ಹಕ್ಕ ಸಚ್ಚಜುಲ್ ಎಫ್ಎಂ 91.5
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीटीआरई एफएम 6 दारो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
3: आजकल बहुत सारी जज्बाती तकरीर हो रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो सकता, किसी एक सूबे का फैसला नहीं हो सकता। हुकूमत को बैठना चाहिए, अपोजिशन को बैठना चाहिए, सूबों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये है कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
4: इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके नथो सके। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख़्तियार हेठी सतह ताईं मुंतकिल थींदा। ॾखण या उत्तर पंजाब ठहण सां पंजाब सिंध में खां सघंदो, ऐं हिन नौकरी ते रहां या न रहां चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीच सेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न, पर निज़ामी हटाइण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं हिन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
5: नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। नओं राजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबे हयात पखिड़जी वेंदो, आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेत को बि फ़र्क़ उतरी चयो इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि। इंतज़ामी यूनिट में टंदड़ घुर्जे, असेंबली जे स्पीकर हुकूमत जा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी न ॾियण बिना मामला अॻिते न, इंतज़ामी अख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि। पंजाब बिज़नेस राव में आहिनि, आइनी फ़राड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी।
4: सिंध असेंबली मां सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद पाकी वज़ीर जा तकरारी बयान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खां नोटिस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद कोड़े जी सदारत हेठि इजलास दौरान मंज़ूर इजलास में पालीगे जमहूरियत तरमीम सूबे जी बहितर ऐं
5: ऑफिसर सां मुलाक़ात। फील्ड मार्शल खे बलोचिस्तान जी मौजूदा सिक्योरिटी सूरतहाल, ऑपरेशनल तयारियुनि, अमुन ऐं इस्तेहकाम बरकरार रखण लाइ जारी क़दमनि ते ब्रीफिंग डि॒नी वई। बलोचिस्तान जी समाजी ऐं इक़्तिसादी तरक़ी लाइ मामलनि बाबति मामलनि जो बि जाइज़ो वरितो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फ़ौजी जवाननि जे पेशेवरानी सलाहियत, ऑपरेशनल तयारी ऐं अज़म खे साराहींदे चयो त बलोचिस्तान जे अवाम जो अमुन, खु़शहाली ऐं भलाई रियासती कोशिशुनि जो मर्कज़ी महिवर आहे।